0: दृष्टि एवं चश्मा जाँच आंखा को नाली फोहर निकाली आंखा को आना निकालने को साथ ही कंप्यूटर आंखा को जांच कर आंखा को जांच पड़ताल कंप्यूटर प्रविधि चश्मा फिटिंग चश्मा एवं सनग्लास खरीद में 10% छूट दी विद्यार्थी ओपीडी में 30% व चश्मा खरीद में 20% छूट वृद्ध अपांग तथा असहाय साथ ही विद्यार्थी ओपीडी चार्ज में 30% छूट को व्यवस्था कर शनिवार व अन्य सार्वजनिक बिदा को दिन पनि बिहान 8 बजेदेखि साझ 6 बजेसम्म आंखा संबंधी संपूर्ण सेवाहर उपलब्ध होने
1: प्रोपाइटर दिनेश राय संपर्क नंबर 98 5 28 70 3 5 98 130 034 213
0: सोलुखुम्बु आंखा उपचार केन्द्र सोलुखुम्बु नगर पालिक वडा नंबर 5 समेरी सोलुखुम्बु
2: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड की मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब ओखलढुंगा को मिलन क्षेत्रमा
3: होंडा का विशेषता
4: जापानीज ऊर्जा प्रणाली उत्पादित
3: उत्कृष्ट माइलेज
4: राम्रो रिसेल मूल्य
3: टिकाऊ र भरपर्दो
4: अफरोड का लागि पनि उपयुक्त
3: BS6 तथा नया नया भर्सन बजार में लंच भइरहेको
4: सब उम्मीद समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी
3: हाम्रा सेवाहरू
4: ओखलढुंगा र खोटाङ को डिजिटल बजार बाटै फाइनेंस को सुविधा सहित होंडा का सब मॉडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
3: जुनसुकै मॉडल का जेन्युइन पार्ट्स का साथ ही सर्विसिंग सेवा
4: एक्सपेंस गो सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निशुल्क दिइने
3: अनलाइन बाट बुकिंग गरी भुक्तानी गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ
4: ओखलढुंगा को लागि आधिकारिक विक्रेता होट मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिशरण नगरपालिका 11 गोरुमारी भुजानी ओखलढुंगा
3: संपर्क नंबर 037590222 98528802222 र 98428030

0: सोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: स्टूडियो टाइम
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलू दुर्कुंड नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू।

थप जानकारी का लागि सम्पर्क नम्बर गुरुकुल नारायण श्रेष्ठ 9763-00-5784 र विवेक श्रेष्ठ 9862-82-00-00 सुनु दुखकुण्ड नगरपालिका 5 सैलरी सुनु खुम्बु।

बंगू टिंगू दांत मिलाउनी, दांत को एक्सरे करनी, सुन चांदी को दांत रखनी, गीजा सुनी में रगत आई रखनी, मुख गनाउनी समस्या को उपचार करनी, बच्चा को दांत निकालने साथ ही कीड़ा लगे को दांत भरनी, बच्चा को उमेर नपुगी दांत में कीड़ा लगे दुखी में उपचार करनी।

0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड की मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब उखरी झुला को मिलन चेतना।